0: जी उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
0: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है। फिर मैं एक दफ़ा फिर से मेरा जुनून ताज़ा हुआ, फिर से मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया।
1: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants wherever they may be.
2: Art against all odds. Why Paris's massive new rapping project almost didn't happen. Straight out of a movie, the absolute must-sees.

0: ये माथा कंडा मत फगा हन बकरी अपन तुझे तो कंडा भी फगा
1: बकरा जाएगी मेरी रही।

0: I'm finding it.
1: खाना है तो खाने
0: मर
1: नपुर हाँ तो नहीं तो आ जाए तो पंजा लेंगे खाने नहीं दी तो कोई मौरी लग नहीं अरे कसम

होकर लड़ा होकर लड़ा मुझे मुझे मुझे हकल हकल अरे हो कुम का करी भी होकर लड़ा वो पानी पी भी खड़ा करी भी लड़ा लड़ा लड़ा

0: ஐ கேர் பா பண்ட
1: பட்டல் பட்டல்
0: பட்டல் வர சாய் பா பிந்தா
1: माल घाटा रखे
0: कोनो कोनो माल बहुत रे भाई जो है जी आज ही जमीन की है ही जे
1: डोकार पे है
0: डोकार और बाबा ये वाड़ी में ही कदा वाड़ थी कदा की थी तड़े डी वाला ही थी बाहर जंगल में नकरे एकड़ी भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
1: घटी बंद के जड़ी का वास्तु जे तो दे जड़ जड़ बड़ा
2: कितने हांडी है बच्चा
0: से हांडी 70 कन जेवा है
2: आतले है ही
0: हो
2: तो लागता ना थी तेवड़ा से
1: वो तो अलग अलग धन भरो ना हाल
0: ये तुम्हारी
1: ना आ भी जा भाई ने
2: ओ एड़ा वावे है ना ओड़े ये भी जा भाई ने आ मारा मोटा ससुरा ने तुम बैठा
1: आ अपनी जमीन है
2: आ अपनी जे
1: आ यहां से करी ने ये बजो अंदर हम बजे अपनी जे
0: નોકરી
2: બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था नैन में धणी वटे असा एवर आई मंजन इन बारे में 40-50 हज़ार जी दवाई कही है माल जी छता माल जी दसो ताई परी सीधी है
1: हनी लाखोरी काचल रही वही ने लाखोरी हनी अड़े विचारे ने वेसा पे खणी हिंद घेट न वडा मनु में वे कासल था कड़ो हजार आतारा में निकरो था हन
2: ओहो वी दाड़ी तपावा तो हिंदी के कड़ो कड़ो मत के ओइल जो न दवा जो अच्छी नहीं खपे तो इधर रहो ने खपे तो जावा दे सामी ना आई जगह अतुर राशि था को तो

आई पंड उठन गया का कक थवाई के गोरा त ने मने अठो अधी करे वराय दे गाई पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वराय छडन दा तपन को कोंडा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

0: वालेकुम सलाम। ठीक आई? मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ यारी बने टाइम जुड़े थे तो ना बने हलाई। हाँ टाइम जुड़े ना तो जल जो कम मत हुई जी समझी कर पुता की रे पुरात जो चढ़ी तो ही तो पैर आचे होने सुन रही यार।
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है हमारे भान जी दुआ है।
1: दो आला ने माइट रंजी है
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: इधर वाली भी आई कर दे
0: इधर शायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को शादी जी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: तो के गायल करे भाई।
1: हाँ हाँ

0: खाना है खाना है
1: मर
0: नपुर हाँ तो नहीं तो आ जाए तो पंजा ले लेना खाने नहीं दी तो कोई मौरी लग नहीं अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ चोकर वाय मालधारी वतन वो खीड़ू है बई थे भी उद्योग रोगा जो जमीनों जिना है रही माल बेचार वही किना

पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, मुझे मुझे मुझे हकल हकल, अरे हो कम का करी भी, पकड़ रहा, वो पानी पी भी की साड़ो करी भी, रोड़ा रोड़ा रोड़ा

0: I care, Bob and
1: Patel, Patel,
0: Patel, where am I? Chava Binda?
1: माल घाटा रखे
0: करू कर माल बतरे भाई जो है ये आज ही जमीन की है ये है डोकार और बापा ये वाड़ी में ही कदा वाड़ थी कदा की थी तड़े डी वाला ये बाहर जंगल में निकले एकड़ी की भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
2: घटी बंद की जड़ी का वास्तु जे तड़े जड़े जड़ बड़ा
1: મોટા સસરા ની તમે બેઠા
0: નોકરી
1: ભણવું તો પડે પછી બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था हिन में धणी वटि असां वर ऐं मंझंदा न हिन वारे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहे हिन माल जी छा त माल जी ॾिसो था ई पूरी सिधी
1: हनी लाखोरी काचल रही वही ने लाखोरी हनी अने विचार ने वेसा पे खणी हे तो घेट वडा मनु में वे कासल था कड़ो हजर वातारे में निकरो था हन ये
0: ओ हो वीर अली तपावा तो इंदी के कड़ो कड़ो मत के ओइले जो ने दवा जो अचिंगे ने
1: खपे तो इधर ना खपे तो जावा जदे सामी ना आई जगह अतुरासी सको तंगा

आई पिंड उठन जाएगा का कथो आई जे घोरा ते ने मने अठो अधिक करे वराय दे गाई पण वरी पण ए लगे तो जे सफा वराय छडन दा तकन पो कोंडा एतरो मारो 1000 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

0: वालेकुम सलाम। ठीक है? मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ यानी बने टाइम जुड़े थे तो ना बने आला ही। हाँ टाइम जुड़े ना था जल्दी जो कम मत हुई जी समझी कर पता की रे पुरात जो चढ़ी तो ही तो पैर आ चुके हैं सुन रही यार ना।
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस क्या हाल है हमारे भानजी तो आए।
1: दो आला ने मैटर नहीं किया।
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: ये जरूर वाली बयान कर दे।
0: इधर शायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को शादी बनानी
1: बेवफाई शायरी।
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: बस तो के गायल करे भाई।
1: हाँ क्या तो कुछ धंधा करो करो जरूर।
0: धंधा उठा कर दिया तो रहती मेरा कहीं आज जर तो था जैसे हमने नौ वर्ष बीत गए आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर याला ही मेरे थी मांडा मांडा को लोग नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी में लगी हुई है
0: हैं
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी ले गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने जंजीर का नहीं उठा गाड़ी बरोबर आने तेरे थी मेला है पे गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जा।
1: यही बात ना किया है।
0: इनका ना बड़े साधन सीधा ये धंधा बरोबर ना बड़े कौन टोला था जो तो मात तारे दे पे हो जे टोकरो बेड़ो तो जे
1: सही बात है। रेती भी भरो तो ना जड़ी में कोई पैरा तो करूंगा ना
0: हाँ नहीं तो नए में भरे कर गोठम खाली करने का
1: गोठम खाली करनी थोड़े पैसे तो उठाओ देन
0: एक तो 100 रुपया कितने 150 कितने कड़ा 120 या 300 होगा। कायम ही 100 रुपये फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 कड़ा 100 300 चारी हो कितने कड़ा 5000 वजन
1: नोरे में था हुआ है।
0: निवरे कने बिठाओ को फिरने कने हलने कने का।
1: मैं यूट्यूब पे तो खोल दी शायरी बनाई और गटा गटा खोल दी हलाई है यूट्यूब पे। शायरी तो जिन खोल के मैं पसंद क्यों आनी लाइक किया है बोला
0: ठीक यार ये तो यहाँ बार
1: ये मैं आप बार कौन हो जाएंगे तो शायरी लेके दो तुम रंगा।
0: ओह उधर आया मैं। आये हुए जिंगा जी हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलोअप करो ने चाहे सहयोगी करो ना बरोबर तो हो जो फोटो डाला है टाइम जुड़े तो ना बना डाला है।